समायोता अरे को युद्ध पठाई दियो निर्देश समायोता अरे को युद्ध पठाई दियो।

महान आयत पठाई दू मेरे देश मायो को उठा पठाई दू पर जहाँ भय निउठा हर जहाँ भय निउठा पर जे भय निउठा मन सुधा पठाई दू हो मेरे देश मायो का।

बगाड़ो गंडी लुम्बिनी सुदूर पश्चिम प्रदेश को तराई क्षेत्र का थोड़े ठाव में अगदम देखी हल्का वर्षा तीनवटा ईरानी तेल टैंकर में अमेरिकी आक्रमण अंतरराष्ट्रीय शांति और समुद्री व्यापार को सुरक्षा में गंभीर खतरा ईरान को प्रतिक्रिया एसीसी प्रीमियर कप में।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्र। हुंडा का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रणाली उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भद्रदो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङको डिक्टल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित हुंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिश्रम नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजान ओखलढुंगा।
1: संपर्क नंबर 037590222 9852888022 र 9842880300।

0: पालु एफएम एक से एक दशमलव दुई मेगा हर्ट उज्ज्वल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सुनिए एफएम स्टूडियो टाइम
2: It's 2 PM. News report 2 PM.
3: Time check को साथ में News Star Digital Color Lab तथा ज्वालामय Offset Press सोलु दुकुन नगर पालिका पास सोलु कुंभ।
2: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्न एफएम सुन्न एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली चलचित्र क्षेत्रका गीतहरू

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चोकमा। होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङ को दिक्कल बजार बाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ सर्विसिंग सेवा
2: एक्सपेंस गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरे भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
2: ओखलढुंगाको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाङ ओखलढुंगा।
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852888002222 र 9842880300।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: टाइम
3: चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

0: Rádio Insolo FM
1: Sonu FM 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
2: Sanche Sonu FM Studio Time
3: 6
1: p.m. 6:00 बजे टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 500

0: लैंगिक हिंसा भनेको के हो? लैंगिक हिंसा भनेको सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लैंगिक आधारमा कसैप्रति शारीरिक यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीड़ा पुर्याउने कार्य सम्झनु पर्छ। सो शब्दमा लैंगिक आधारमा
1: Thank you.

0: Adventure. Sonia Fan, Studio Time.
1: It's 8 p.m. रात को 8 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुदकुंडा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू.